0: मानसिक समस्याबाट बच्ने उपायहरू।
1: आफ्नो बारेमा अरूसँग खुलेर कुरा गरौं।
0: स्वस्थ खानपिनका साथै राम्रोसँग सुत्ने गरौं।
1: दैनिक शारीरिक व्यायाम तथा योग ध्यान गर्ने गरौं।
0: काममा व्यस्त रहने र अनावश्यक तनाव नलिऊ।
1: असल साथीहरूसँग मात्रै संगत गरौं।
0: मादक पदार्थ र लागू औषध सेवन नगरौं।
1: नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरौं। मानसिक समस्या भएकाहरूले अन्य रोगहरू मधुमेह उच्च रक्तचापको औषधि नियमित सेवन गर्ने गरौं।
0: स्वस्थ रहौं, अरूलाई पनि स्वस्थ रहन सल्लाह दिउँ।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
3: आई विवेक उठ्याङ खास छपासो चिन्छ हो फुटबल बन्द गर त विवेक खन उहाँ कहाँ हुन् उहाँ छप्स्यारो नाचाउ कहन हुन्
4: ओ हेरो त उहाँ सब भागल पातल कि का हो विवेक खन एकरी स्कुली फुटबल ह्याराइ लग त झन् का जसा पो आपनन
3: देवाली मेन त सब काटल मुना विवेक जिना क्या सङ्घारू देव शान्त होका झिउ निचल्क बैठ हाम्रा तुहान स्वास्थ्य केन्द्र पुगैबी ऐ पारस तू घरक दाबु हन मोटरसाइकल ले खाएको हो त
4: हो विवेक हन यहाँ खुला ठाउँमा सुताए झुल झल्याङ झुलुङ निकरा खन पारी काटीले वही हन हक दिएटु फिल्म काटला खल सोइटी बा काटल ठाउँमा न छो चलाइ निउड न
3: अब मै विवेक हन सजिल हुन कै ख वाकर कसके लग पिटी ता धीरे धीरे खोल देतु ओ घरी वो मुन्री फेक खा देहन
4: बिठारो छन् मै यह जाला विवेक का जुट्टा वो मजा धीरे धीरे निकाल देहन
5: झूठ चसिन सापन का दसाई खतरनाक नि रह समय में जो उपचार कराई से लसे दिखा सपन का कातल मन यहाना फेब बचाई से जिठा सखुआ कटलक मन यहाना झट्ट से झट्ट उपचार केन्द्र में पुगाई से लसे वही हना भारी क्षति हुना से जोगाई से जिठा
6: विश्वास लग्नाओ सही जानकारी पाइक लाग लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए छिठा
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाण्डौ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
8: घर कहिया सिर्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल
9: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कही ना हो का
8: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटरा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफी ओस्ट बनी हो ना ओट्रफी पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
10: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
11: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 5143 26।

0: बुका पिएरैठ कबु पेन्सिल रैठ कबु झलै फटाका आजिठ काकना हो बाबा फ्यो ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से त लड़का सामान निहराइत
1: ओहो ये बुढा लिखबे का हुइति जरम भर भर बरैति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रटगे यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पियरी थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुई थी कहीं आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे ठारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपनी खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टीकापुर में शहरी स्वास्थ्य प्रबंधन तथा सिकल सेल केन्द्र संचालन, दैनिक ब्रेमियर जांच संगे सिकल सेल के ब्रेमियर उपकरण के निदानो परामर्श में प्राथमिकता देना। जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र शुरू। जानकी 9 के वाडाध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारी हो, सदस्य खड्का के पुनः पद बहाली। मुलुक के बेरोजू 15 खर्ब नागल 1 वर्षमा थपगिल 88.9 करोड़ बेरोजू हो। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 मा आज अमेरिका और नेपाल खेल्थी। टीकापुरमा शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन तथा सिकल सेल केन्द्र संचालन फिल्बा केन्द्रमा उपचार सेवा शुरू करगिल्बा। मेडिकल अधिकृत अभिनन्दन शाहके नेतृत्वमा 8 जने स्वास्थ्यकर्मी हुक्रा सेवा देती रहलबाटै केन्द्र मन्त्री विशेषज्ञमा दैनिक बिरामी जाँच परामर्श ल्याब फार्मेसी लगायतके आधारभूत सकु सेवा उपलब्ध हुनेबा। यहां से सिकल सेल के बेरमिया हुकरन की निदान और परामर्श में प्राथमिकता दी जिनाबा। सेवा शुरू हुई पासे कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी यहां के सेवा लेना बेरमिया हुकरन सहज होना बटुटी कर्मचारी हुकरन मुस्कान सहित की सेवा देना अनुरोध कर ले बाटे। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल से 1 वर्ष के तैयारी पासे सेवा शुरू हुई बटुटी सिकल सेल उपचार है प्राथमिकता देना और निम्न वर्ग के मानन है समेत आधारभूत सेवा सहज रूप में पहुंच पुगेन और लोक कल्याणकारी राज्य के अवधारणा अनुसार सेवा शुरू करलक बटवा गिलबा। यहां से ल्याब सहूलियत दरमा समेत औषधि उपलब्ध लगायत के सेवा थप गिल बटवा गिलबा। वार्ड नंबर 1 के वाड़ाध्यक्ष मोहन लोहार विकास से थारू जातिन में सिकल सेल के समस्या बढ़ती गैलक ओर से उपचारात्मक और प्रवर्धनात्मक हिसाब से उपचार और परामर्श देना, रोग लगल से बच सकना समेत सचेतना जगैना सहयोग हुईना बटोले बाटै। वहां और पालिका में फे लुम्बिनी प्रदेश में फे नागरिक हुकरा फे सेवा ले सकना कहल बाटै। टीकापुर अस्पताल के अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारी से स्वास्थ्य क्षेत्र में और उपलब्धि हासिल हुई बटोईटी। सिकल सेल के बेरामी हुकरन उपचार में तमाम समस्या होते रहल बेला सिकल सेल प्राथमिकता दैके स्वास्थ्य संस्था स्थापना हुईलक ओर से सहज हुईना बटुले बाटे। पालिका के कार्यविधि बना के नगर स्तरीय शहरी स्वास्थ्य प्रबंधन केन्द्र संचालन कर लेख हो। अब केन्द्र मार्फत विशेषज्ञ सेवा सिकल सेल के बिरमे हुकरन की निदान उपचार करना के साथ ही स्वास्थ्य सचेतना लगायत के क्षेत्र में काम करना जनस्वास्थ्य निरीक्षक केवल सिंह सार्की बटोले बाटे। कार्यक्रम सहजीकरण स्वास्थ्य शाखा सह संयोजक कमल बहादुर रावल कर ले। जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 के वाडाध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारी हो, वाडा सदस्य कल्पना खड्का के पुनः पद बहाली हुईलबा। अदालत के सफाई डेल पासे अध्यक्ष भण्डारी हो, सदस्य खड्का के पुनः पद बहाली हुईलक बटवा गिलबा। आर्थिक अनियमितता संबंधी अख्तियार में मुद्दा दायर हुई पासे अध्यक्ष भण्डारी सहित सदस्य खड्का हो कुछ कर्मचारी 2022 साल कार्तिक 2 गते निलंबन में परल रहे। दायर करलक मुद्दा में विशेष अदालत के 2083 वैशाख 15 गते के फैसला अध्यक्ष भण्डारी के पक्ष में आये पक्षे वहां अदालत से सफाई पाई के हैं। दूसरा कार्यकाल के लक निर्वाचित भण्डारी से टीम है पहल कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमित करल घटी अख्तियार में मुद्दा दायर फील रह। प्रचलित कानूनों विधान मिच के राज्य कोष से खर्च करलक रकम क्या आकार करीब 1 वर्ष के बजट बराबर हुई लागल बा। महालेखा परीक्षक कार्यालय से शुक्रवार राष्ट्रपति है बुझाइलो उ लगत्ते सार्वजनिक करल 63 वार्षिक प्रतिवेदन में हालसम कुल बेरोजू 15 खरब 43 अरब रूपया पुगल बतागिल बा। आछक 1 वर्ष में करीब 3 खरब के हाराहारी में बेरोजू बढ़ल बा। गैल वर्ष कुल बेरोजुके रकम 12,84,00,000,000 रहल रह चालू आर्थिक वर्षमा सरकार से 19,64,00,000,000,000 के बजेट वक्तव्य जारी करगेल रह वक्तव्य बजेट के अनुपात हेरबेर कुल बेरोजु रकम 80% के हाराहारीमा पुगलागल बा 5 वर्ष आगे के तुलनामा बेरोजु रकम के आधा बढ़ल बटवागिल बा महालेखा परीक्षक टोयम राय लगायत के महालेखा परीक्षक कार्यालय के उच्च पदस्थ पदाधिकारी हुमकरन की टोली से राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भेट करके 63वां वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइल के हो महालेखा परीक्षक के कार्यालय आर्थिक वर्ष 81-82 में राज्य कोष से आर्थिक कारोबार हो अन्य समेत काम कार्यवाही के लेखा परीक्षण करके लेखो महालेखा परीक्षक टोयम राय से पाचक एक वर्षमा 88,09,00,000,000 बेरोजु ठपल बा कार्यवाही टुंगो लगाई पर्नामा रकम 2,36,00,000,000,000 बा दुनु जोरोबेर अनियमित रकम 3,24,00,000,000,000 पुगल बताइल बा खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम पाछक फेर सैबी सुन्तिर बी सामुदायिक रेडियो टिका प्रएफएम
1: महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय कञ्चनपुरको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना
2: सिटीभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुरमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अध्यापन गराउन शैक्षिक सत्र 2083-84 लागि 3 वर्ष प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी CMLT 30 जना सामान्य चिकित्सा HA 40 जना नेत्र विज्ञान OA 40 जना डिप्लोमा इन फार्मेसी DPF 40 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन फर्म खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ अनलाइन आवेदन फारम वितरण शुरू 29 गते देखि
1: अनलाइन आवेदन फारमको अन्तिम मिति जेठ 13 गते बुधबार
2: आवेदन फारम शुल्क ₹1,000 मात्र अनलाइन आवेदन फारम www.cetvt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नुपर्नेछ अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि SEका कागज पत्र ल्याई शिक्षालयमा भर्न सकिनेछ
1: आवश्यक कागज पत्रहरू
2: SEE SLC उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति
1: जन्म दर्ता नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि
2: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि
1: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
2: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस
1: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर
2: सम्पर्क नम्बर 0999900044 98,58,78,00,044 98,487,20,247 97,642,83,921 र 98,69,63,520
3: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
4: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू
5: नलका सामान नलका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो
6: हटब्याग थर्मस जर्किङ पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला
4: ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008
7: कर्णाली नमुना मावि टिकापुरमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि कक्षा 11 विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो
8: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 लागि कक्षा 11 कानून होटल म्यानेजमेन्ट मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ सिट सीमित छ आजै सम्पर्क गर्नुहोस्
7: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी र खेलाड़ीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ
8: प्रणाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुरका विशेषताहरू:
7: फराकिला कक्षाहरू,
8: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको,
7: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको,
8: खेलकुद सुविधा,
7: कम्प्युटर शिक्षा,
8: स्वच्छ पिउने पानी,
7: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
8: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली, सम्पर्क नम्बर 98584-24167।
7: तपाईको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री।
9: टिकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना।
10: टिकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, तपसिलको स्थान, मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वडा नम्बर 1-3 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
9: मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 5-4 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
10: शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 4-5 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
9: विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 2-6 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
10: ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1-7 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
9: एकतानगर कार्य समितिको भवन, वडा नम्बर 1-8 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
10: नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर 6-10 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
9: झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 9-11 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
10: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 3-12 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
9: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली।
0: विश्राम पाछे फेरसे स्वागतमा। अत्याधिक गर्मीकै कारण कञ्चनपुरकै दुईठो स्थानीय तहसे विद्यालय सञ्चालनकै समय परिवर्तन गरलबाटै शुक्लफाटा कृष्णपुर नगरपालिकासे स्वास्थ्यमा परसेक्ना प्रतिकूल असरे मध्यनजर गर्ती सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय बिहानकै सत्र सञ्चालन गर्न निर्णय गरलबाटै कृष्णपुर नगरपालिकाकै कार्यपालिकाकै बैठकसे समय प्रतिकूलकै कारण विद्यार्थीकरणकै स्वास्थ्य अवस्था मध्यनजर गर्के विद्यालय बिहानकै सत्र सञ्चालन गर्न निर्णय गरलबा। नगर प्रमुख हेमराज ओझाके अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्ररूप 2076 के समेत लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2083 बमोजिम समेत पाठ्य घण्टा नै घटैना तथा नागरिक समेत नगरभरके विद्यालयमा एकरूपता कायम हुन करके व्यवस्था लागू गर्न कहलबा। शुक्लफाटा नगरपालिकामा बढ़तिरहल गर्मी के कारण यह जेठ 4 गते से लैके बर्खे विदा सम के समय में विद्यालय बिहान के सत्र संचालन हुई कहलवा। अभिभावक शिक्षक और विद्यार्थियों के मांग अनुसार नगर शिक्षा समिति के बैठक से समय परिवर्तन करल के हो। यह आगे बिहान के 10 बजे से संचालन हुई त्याल विद्यालय अब बिहान के 7 बजे से शुरू हो के दोपहर के 1:15 के समय सम संचालन हुई बा। नगर पालिका के शिक्षा शाखा प्रमुख टेकेन्द्र राज भट्टा के अनुसार अत्याधिक गर्मी के कारण विद्यार्थियों के थकान मेटना, दुखना तथा समेत ध्यान केन्द्रित करना कठिन हुना समस्या देखिले ओर से बिहानी सत्र संचालन करना निर्णय करल। शिक्षा शाखा अधिकृत सुरेश भट्टा समय परिवर्तन हुईल फेव। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार लेटर ग्रेडिंग निर्देशिका अनुसार पाठ्य घंटा नहीं घटाके नियमित पठन पाठन और शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न जानकारी दिने बाटै। जानकी गाउँपालिकाकै अध्यक्ष गणेश चौधरी, स्वास्थ्य समाज निर्माण केला नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र मनसे सहयोग पुग्ना बटोइले बाटै। जानकी गाउँपालिकाकै वार्ड नम्बर 3 मा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र उद्घाटन गर्थी अध्यक्ष चौधरी से व्यक्ति उकरण स्वास्थ्य समेत बनाइना हो। दीर्घ रोग निराकरण करक लाख सेवा केन्द्र मन से लाभ लेना आग्रह करगिलवा। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र मन से आधारभूत आयुर्वेद सेवा अन्तर्गत के निशुल्क औषधि सेवा हो। योग ध्यान लगायत के सेवा देती रहलबा। वाड़ा अध्यक्ष सुरेश चौधरी के अध्यक्षता में हुई उद्घाटन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि उकरा प्रमुख प्रशासक के अधिकृत भानुभक्त भट्ट कर्मचारी स्वयंसेवक वर्गहरू लगायतकी उपस्थिति रहल रह। जानकी गाउँपालिकाकै आयोजनामा पाँच दिने सामुदायिक होमस्टे व्यवस्थापन तालिम ओराइलबा जानकी गाउँपालिकाकै आयोजनामा संचालित पाँच दिने तालिम कालिक ओराइलक हो। तालिम समापनकर्ती गाउँपालिकाकै अध्यक्ष गणेश चौधरी तालिममा सिखल बाद व्यवहारमा लागू गर्न तालिममा सहभागी हुन आग्रह गर्नेबाटै वार्ड नम्बर नौ वार्ड नम्बर छ के जगतपुरमा हुइलक तालिममा जानकी गाउँपालिका के तीन स्थानमा जगतपुर बोकलवा ओ अमौरीमा संचालन हुई रहल होमस्टेमा समेत आबद्ध 25 जना नागरिकहरू सहभागिता जनाएल रहे। तालिम होमस्टे घरवास महासंघके महासचिव कृष्णलाल चौधरी ओ सुरपश्चिम अध्यक्ष दिनेश चौधरी से सहजीकरण करल रहे। जानकी गाउँपालिकाके अमौरी जगतपुर ओ बोकलवा होमस्टे संचालन हुई रहलबा संचालित होमस्टे व्यवस्थापनमा सहयोग पुगे कहिके पाँच दिने तालिम संचालन कल जानकी गाउँपालिका वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्र प्रसाद जैसी जानकारी दिले बाटे। जानकी गाउँपालिका मेरो सरसफाई मेरो जिम्मेवारी कहन नारा सहित के राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह 2083 समापन करबा सप्ताह के अन्तिम दिन दुर्गौली बजार सरसफाई करके सचेतनामूलक कार्यक्रम सहित सरसफाई समापन सप्ताह करगिलक हो। खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता इकाई प्रमुख अनु चौधरी के अध्यक्षतामा हुई कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट जनप्रतिनिधि कर्मचारी लगायतकै सहभागिता जनाएल रहे। खोजखरमा एक घरी विश्राम विश्राम पाँच फेरसैबी सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टिका एफएम।
11: जब जब गर्मी महिना आउँछ तब तब अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरूको याद आउँछ। म्याङ्गो लिची कोला स्ट्रबेरी कुल्फी चोकोबार चोको फनबार आहा कति मिठो मलाई त साह्रै मन पर्छ। यति मात्रै कहाँ हो र शुद्ध दूधले बनेको अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमको खोवा कुल्फी कर्नेटो र पार्टीहरूको लागि फ्यामिली प्याक पार्टी प्याकका सुविधा हुनुका साथै अन्य विभिन्न फ्लेभरका आइसक्रिमहरू र सादा आइस बलक पनि उत्पादन गरिन्छ। मैले त वर्षेनी खान्छु। अब खाने पालो तपाईँको जुन ठाउँ जानुहुन्छ उही ठाउँ पाउनुहुन्छ अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरू। एकचोटि खोजी खोजी खाउँ है।
12: यदि तपाई अमूल्य ब्रान्डका आइसक्रिमहरू बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने धरौटी राखेर डिप फ्रिज उपलब्ध गराउने सुविधा रहेको छ। सम्पर्कको लागि बर्दादेवी डेरी उद्योग टिकापुर एक ब्लक नम्बर 13 सम्पर्क नम्बर 9854899455 र 9863769622।
11: रियल मिल्क रियल आइसक्रिम अमूल्य आइसक्रिम खोजी खोजी खाऊ यी ब्रांड का आइसक्रीम जहां पनि उपलब्ध छ।
13: जानकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना।
14: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075 बाल श्रम ऐन 2056 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराइएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वत बदर हुने भएकोले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर ग्यारेज होटल कारखाना गिट्टी बालुवा घरेलु कामदार गाडीमा सहचालक नलगाउन साथै धूम्रपान मध्यपान सुर्तिजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बाल बालिकालाई संलग्न नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। यदि कसैबाट कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बेहोरा सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
13: अध्यक्ष गणेश चौधरी बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका जानकी कैलाली।
15: बाबु ए बाबु काल मनिष मेडिकल में जाइस्तो
16: मै नै जाइ
15: उहाँ आफन अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर्छु।
16: उहे मारे तो तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
15: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर्के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी जाए।
0: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोसरो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417। विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। नेपालमा पश्चिमी वायु स्थानीय वायुकै आंशिक प्रभाव परल बा। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार हाल गंडकी कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारण मेर के मौसम बदलने वाकल से बाकी प्रदेश में आंशिक मौसम बदलती बा। उसके कुछ प्रदेश में कुछ स्थान में बागमती गंडकी कर्णाली प्रदेश और हिमालय तथा पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में और मध्य प्रदेश में एक दो स्थान में मेघगर्जन सहित के मध्यम वर्षा और हिमपात की संभावना बा। मध्य प्रदेश उसका लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के कम स्थान में हवा हुरी के संभावना फेबा। टीकापुर में चलती रलक खुला महिला फुटबल प्रतियोगिता में खेल प्रेमी हुकरन के लग सकारात्मक बनती गये बा। प्रतियोगिता के पुरस्कार फे आकर्षक रलक ओर से दर्शक हुकरन के लग एकदम रमाइलो होती रहल बा। पाछक समय में फुटबल क्षेत्र में महिला हुकरन के सहभागिता बढ़ती गये ओर से इस क्षेत्र में फुटबल खेलना चाहना रहल महिला हुकरन के लग थप प्रोत्साहन हुए कहना उद्देश्य से प्रतियोगिता हुईलक कैलाली जिला फुटबल संघ के प्रशिक्षक शंकर तिरुवा बटोली बाटे। ये प्रयास से समाज में फुटबल खेल हुई पासे पुरुष हुकरन खेल नहीं हुके खेल रहल बुझाइल बा। इस क्षेत्र में महिला हुकरन फे समेत फुटबल प्रतियोगिता प्रति आकर्षण करना प्रतियोगिता आयोजन करल यूथप टीकापुर के कोषाध्यक्ष दीपक रिमाल जानकारी दिले बाटे। प्रतियोगिता जे 3 गते समापन हुइतिबा। वाईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग दुई अन्तर्गत नेपाल महुति रालक नेपाल अमेरिका ओ स्कटल्याण्ड बीच के श्रृंखलामा नेपाल आज अमेरिका के सामना गर्तिबा। श्रृंखलामा दुई खेल समापन हुइलबा। दुई खेलमा समान किसिम के नतिजा आइल बाकलसे नेपाल फे समेत डीएलए पद्धतिमा दुई रन से समेत हिटाइल स्कटल्याण्ड से बिहीबार अमेरिका संगे फे उहे भाग दोहोर्याइगिल्बा। लीग दुईमा रोमाञ्चक जीत निकृती नेपाली टोलीभर दबावमा बा कलसे। आज अमेरिका संघ के खेलमा जीत निकृती नेपाल लयमा फर्कन चाहना रहलबा। कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक रहलबा कलसे। लीग दुईमा अंक तालिकामा अमेरिका 25 खेलमा 36 अंक जोरलबा कलसे। दोस्रो स्थानमा बा कलसे श्रृंखला के शुरू हुन आगे। शीर्षमा रलसफेन स्कटल्याण्ड के लगातार दुई खेल निकाल पासे अमेरिका शीर्ष स्थान से दोस्रो स्थानमा छरलबा। स्कटल्याण्ड 30 खेलमा 38 अंक जोरके शीर्ष स्थानमा बा कलसे। नेपाल 25 खेलमा 18 अंक सहित 7 स्थानमा बा। नेपाल ओ अमेरिका हालसम ओडीआई फर्मेटमा 11 पटक आमने सामने हुइबाटै नेपाल 4 खेल जित्ती 6 खेलमा पराजित हुइबा कलसे। एक खेल समेत टाई हुइल बतागिलबा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर में शहरी स्वास्थ्य प्रबंधन तथा सिकल सेल केन्द्र संचालन दैनिक बिरामीहरूकरण के जांच संगे सिकल सेल के बिरामीहरूकरण के निदान और परामर्श में प्राथमिकता देना। जानकी गाउँपालिका वार्डमा 3 नागरिक आरोग्य सेवा शुरू। जानकी 9 वाडाध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारी हो। सदस्य खड्काके पुनः पद बहाली। मुलुकके गरुजु 15 खर्ब नागल एकै वर्षमा थपल 88.9 करोड़ गरुजु हो। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 आज अमेरिका और नेपाल खेल्थी। रिटा बकलत थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई। सामुदायिक रेडियो टीका पर FM सुनते विराम।

0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त भाउ, के पाउँछ त्यहाँ?
1: ए त्यहाँ त्यहाँ छ नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
2: ए एभ्रीलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
3: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
4: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रीला ट्रेडर्स।
5: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रीला ट्रेडर्स,
6: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
4: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484463 र 98164602004।
7: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
8: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरजस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
7: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
8: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे, जय शिव जय।
7: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झोले फटाका आज काकना हो काकना हो। बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई। कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन। ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया। मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड़ खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टीकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्ड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबी मा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 9848518828
7: के हजुर नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ या हजुरको घरमा लिकेज छ छतबाट पानी चुहिने भित्तामा दाग देखिने पेन्ट बिग्रिने वा स्ट्रक्चर कमजोर हुँदै गएको छ यस्तो समस्या समयमै समाधान नगरेमा पछि ठूलो क्षति पनि हुन सक्छ दिवार फुट्ने छाना झन कमजोर हुने करेन्ट लाग्ने र घरको मजबुती घट्ने खतरा हुन्छ अब चिन्ता लिनु पर्दैन धनगढ़ी वाटर प्रुफिंग एण्ड होम डेकोर ले ल्याएको छ वाटर प्रुफिंग र होम डेकोर सम्बन्धित पीवीसी डब्लूपीसी र प्लेटेड प्यानल को काम र बिक्री को सेवा पनि गरिन्छ धनगढ़ी वाटर प्रुफिंग एण्ड होम डेकोर टीकापुर का लागि सम्पर्क भरत अधिकारी सशस्त्र प्रहरी कोण पछाड़ी फोन नम्बर 9648436213

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दे भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाका अनला बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनाब
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।
2: करुणा निम्न माध्यमिक विद्यालय में भर्ना खुल्यो। यही शैक्षिक सत्र 2083 साल को पावन अवसर में संपूर्ण अभिभावक विद्यार्थी शुभचिंतक इष्ट मित्र हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते अंग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यम मा नया भर्ना खुल्यो। यदि तपाई आफ्नो नानी बाबुहरूलाई भर्ना गराउन चाहनुहुन्छ भने करुणा निम्न माध्यमिक विद्यालय विकासपुर पार्क रोड टीकापुर मा सम्पर्क गर्नुहोला। करुणा निम्न माध्यमिक विद्यालय वडा नम्बर 2 विकासपुर पार्क रोड टीकापुर कैलाली।

0: मुका पिएर कभी पेन्सिल कबू झोलै फटाका आज काकना हो काकना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँसे झोला आनलसे त लड़का सामान निहर
1: ओहो ई बुढा लिखले का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कै कबू पेन्सिल हेरा कै कबू झोलै फटा कै बढ़िया ठाउँसे झोला लान नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रटगे यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: हेरामे दिन रात गरी मरी मरी पैसा कमायो तर के गर्नु यो भर नभएको जिन्दगी कति बेला के आपत आइपर्छ थाहै हुँदैन सोच्दै नसोचेको घटना हुन्छ कि बिरामी परिन्छ अनि सबै पैसा स्वाहा
4: हो नि बिरे मलाई नि त्यस्तै पर्यो नि हेर्न अस्ति अचानक बुढीलाई एपेन्डिसाइटिस भएर रातारात अस्पताल लगेर इमर्जेन्सीमा उपचार गर्नु पर्यो यसो के इलम गरौंला भनेर राखेको पैसा सबै सकियो नि हेर्न
5: यो रामे र बिरेको कुरो सुन्दा नि मलाई त अचम्मै लाग्छ क्या यस्तै आपतको समयमा अस्पतालमा इमर्जेन्सी हुने खर्चहरू बिहोरिदिने सन लाइफको सन मेडिकेयर बिमा सुविधा लिएका थिएनौ र तिमीहरूले
4: के गर्छ र सन मेडिकेयरले
5: सन मेडिकेयरले सड़क दुर्घटना एपेन्डिसाइटिस पेनक्रियाटाइटिस हृदय घात मस्तिष्क घात विद्युतीय वा अन्य जलन डुबान विषक्तता जस्ता 15 दुर्घटना र रोगहरूका लागि आपतकालीन अस्पताल खर्चमा क्षतिपूर्ति दिन्छ त्यो पनि एकदमै थोरै लगानीमा
4: यति गरेपछि धेरै राहत हुने रहेछ त
5: हो कान्छा अपर्झट आउने आपतमा राहत भनेकै सन मेडिकेयर कुरा बुझ्यो होइन त तिमीहरूले
4: चिया पनि खाइयो कुरो पनि बुझ्यो है केटा

0: जुनसुकै बाटोको लागि बनेकै र सबैको लागि भनेकै होन्डा एसपी 125 बेस्ट राइड लोएस्ट मेन्टेनेन्स कस्ट बेस्ट एक्सचेन्ज भ्याल्यु बेस्ट माइलेज पावरफुल परफर्मेन्स मात्र रु 2,99,900
1: उहट
2: हेर बुढिया बर्खाक समय छेबा पखारिक मुहका रुकल बाकी मुसुआ आयल कलश आब मुसुआ खुस्ती सपुआ आइसक्ता
1: ओहो हो निका ठ्याक्क सम्झनु घरक आँधा पाँदा झोसा बाहर कत्ता कता हुल बा काटा पर्ना रह
2: असी करी हेर बुढिया ओ सिन्हो कलशे काल मिट्टी नाओ टेला रोटी पकाए त बासी खाई दोस्रा सर परिवार मने मिलक सर सफाई करबी दोस्रा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन करबी तनि भी
1: हुई था हो गुरुवा असिन जाला मा त ध्यान घास फोहर झफास बिल थाउ मा ताप नुख पैठल रह सकथ ना
2: ओ हो सेट कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तुओ मई मिलथ भरत आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर से सांप मुस्कुसु के पैठनी सेकना में त चबदार पड़ल दोसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा हुई से साफ ऐना तस्तहा कम हो जाए
1: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुसत थे बा
3: साफ बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैठना फिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
4: मोस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साफ मानव बस्ती लग्घ आई सक
5: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लग्घ उपचार केन्द्र कहाँ बा कई पता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिखे सकती था
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
7: बाबु म तिमीलाई रोक्दिन तर यति याद राख्नु हामी दुईजनाको प्राण तिमी भाड्किएको छ छोरा

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर थी
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: सापन र कटाई से भइसकेका मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्ध आम संचार अन्तरक्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान जीवन सन्देश।
1: नमस्कार, सर्पदंशले भइसकेका मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरूद्ध जनचेतना जगाउन उद्देश्य लिएका अन्तरक्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम लहर जीवन सन्देशमा आफ्नो स्वागत बा मै पुष्पा
2: ओ मै एकज। आज कार्यक्रमको तीसरा पैठा, आज हाम्रो सप्प दशक हुने यहाँ तत्काल गर्भपातमा प्राथमिक उपचारको विषयमा संवाद गर्ने बाँकी।
1: सप्प दशक मन यहाँ का कर शान्त ठहर पठा ओ सप्प दशक मन यहाँ खुना चिज खुवाइ गुठा कि निभुई कना विषयमा हमन सर्पदंश विज्ञ डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य जानकारी दिने बाट।
3: सफल दसैँको छ र त्यो विष छोडेको सर्पले भनेदेखि चाहिँ मान्छे चलमा लायो हिँड्यो भनेदेखि त्यो टोकेको ठाउँबाट विष छिटो भन्दा छिटो रक्त संचारमा फैलिएर बिरामीको ब्रेनसम्म पुग्छ र बिरामीलाई विषको असर छिटो पुग्छ।
2: सात दशलाई बिरामी आउन तत्काल गर्भपातमा प्राथमिक उपचार वो सर्पदंश उपचार केन्द्र संकसिक लैजिन कना विषयमा जानकारी दिएकला बिन्दु ओ हुम कुमार अकबरको तीसरा पैठार फेर सुनबी।
4: महिचा एकदम डर लागत बिन्दु
5: सुखराम जिन्दरावका कुछ नि हुइतुहिन शान्त पक बैठी त ओ सप्पा कटलक ठाउँमा ना चलाऊ ओ ना हिलाऊ बैसेक था
6: बैठा आप हाम्रा तुहिन सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लैजैबी अनि त ठिक हो जाइ नि।
1: हतत साइट ना हुइ ढ्युर पेर जिनकरी ढ्युर जसिन साप बिसाहा निरत ढ्युर जसिन सापनकर दसाई खतरनाक निरहत अमन कनाह कनसे हानिकारक बिसाहा साप फे मनै दसलक खण्डमा प्राय आपन बीस दशलक ठाउँमा निपठैट
2: नाटकै सात दशलक मुनेयान शान्त धरी बातचित कैखन सर्पदंशक बिरम्यान चिन्ता वा तनावन कम गर मदत गरी। सर्पदंशक बिरम्या अक्टाखन ढिउ स्वास्थ्य समस्या होइन ओ हृदय राज समेत विषेक्न उल्लेख कोर्से बिरम्यान परामर्श देख शान्त धर पठा बिरम्यान सहजिल से सुटाख सप्प दशलक भाग चलाए वा हिलाए जिन्दी सप्प दशलक भाग स्वयं रहेछ ठा सप्प दशलक ठाउँमा टम्म कस्किल लुगा गहना मुन्द्री घडी असिबा कलसे तुन्ट झिक्ख घोकला गुनादी
1: बर्खा छ्याक अर्थात साप बहार निस्कन समयमा आफन घर आन्जर पान्जर सर सफाई करबेर सर्पदंशसे बच सेक्दै ठा आफन घर आन्जर पान्जर रलक ख्याङ घाँस कटना फोहोर मैला व्यवस्थापनकै ख सापनक दसैँमा से बाँच सेक्दै ठा याद गरी साप अस्तहे ठ्याङ घाँस फोहोर मैला हुइलक ठाउँ तथा आहार खोजीमा अनाज धरलक ठाउँमा नुक्क बैठल रहेछ ठ
2: समयमा चाहिँ उपचार गरिलेसे विकास साप दसले सिफे मनिनक ज्यान बचाइसे जिठा सापनक दसाइसे प्रभावित मने झट्टसे झट्ट लगक सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लैजा डारी यहीले ऊ मने जीवन बचिनामा भारी मदत गर्था।
1: अब हाम्रा सर्पदंशक बिरभेन तत्काल करपना प्राथमिक उपचारको विषयमा कुछ श्रोता सहभागी होकर विचार सुनी सापक डसल मनैया ओ वाकर परिवार हाम्रा कसिन व्यवहार गर पर्था ओ का कर कैख हाम्रा कुछ श्रोता सहभागी होकन पुछल बाटी
7: अम्बौटी ठारो हो कुछ नाई हे बढिया से लै जाओ औषधि कराओ सन्चो हो जे के व्यवहार सिखाइ परल समझाइ परल ठीक टाइम मा हस्पिटल पुर्याइ परल साफ काटल मने के
8: माया रानी ठारो समझाइ परी चिन्ता नाइ करे अब उग्र तो दुखी रही ही जैसे की कटी सपोर्ट दुखी तो रही तो दुखी से अब समझेबो बढ़िया से की चिंता नाइ करे जैसे कटले बस अपुआ तो दवाई बिरवा बढ़िया से कराओ दवाई कराई के ले जाओ वहाँ अस्पताल में अब नहीं समझे वो तो और दुखी हुई हूँ चिंता नहीं करे क्योंकि समझाए परी बढ़िया से आओ
9: लौटी ठारो दवाई सब बने बढ़िया बढ़िया करो कह के सब बातें बढ़िया बा मने घरे चिंता न करो कह के समझाई थी ऐसे कह के
10: सुनीता ठारू सबसे पहले उकरन जाके उकरन सचेत करे ना हो कि बढ़िया से रहो सपो कट ले भाई का हॉस्पिटल ले जाओ कह के और चिंता ना ले कह के समय में वहाँ हॉस्पिटल पोगी तो बढ़िया से दवाई बिरवा हुई कह के यह सब समझे ना हो ज्यादा चिंता ले तो ज्यादा टेंशन हो जिसका कट ले ओकरो टेंशन हुई कह के तुरे हौसला देव तो वह उचा रही की चाहे बस जिम कह के नहीं तो फिर उचा सबको उचा करता है तो कोने मुठू की जीत हूँ वो संभावना रही कह के टुकड़न की बच जीवे दवाई बढ़िया से हुई जाए ना उचा करो तू रहो घर मने फिर हौसला देव कह के।
11: सीतम चौधरी पहले तो मने गांव घर में फूक एक झारा रहा ना हॉस्पिटल ले जाए अब तो कट्ठे तो तुरंत हॉस्पिटल ले जीत है समझे थे कि मजा से रहो सांप कट्ठे तो जल्दी हॉस्पिटल पुरिया पड़त और अब पहले तनक गुरुवन तामिन ना देखा पड़त चिंता ना करे पड़त की तुझे संचो हुई जीवो कही के
8: राष्ट्रपति थारू समझाए परी कि बढ़िया से दवाई कराई ले जाओ, टेंशन न करो, दवाई कराई तो चोखे जिहिन घरे मन फिर बुझेबो, जिहिन सांप कर ले फिर बुझेबो, उहिन बढ़िया से दवाई कराओ ले जाओ यहाँ वहाँ कही के सिखेना, टेंशन नहीं करो कही के बटेना।
2: हमरा भकर सुनजी सांप दशलक मुनिया वो वाकर परिवार न हमरा करपना व्यवहार के विषय में हमारा श्रोता सहभागिन का विचार।
1: सर्पदंश गर्मी क्षेत्र ग्रामीण और गरीब जन समुदाय में विद्यमान व्यवस्था करगैलक एक स्वास्थ्य संकट हो। किसान बनो व काम करना मन गोठाला और मच्छरन कलाक सर्पदंश कलक पेशागत जोखिम फे हो। धीउ जसिन सर्पदंश बीस निरलक सापन मसे हुईना कठा सप्पादस्ती की मृत्यु हुईना डरक कारण बीस निलक जसिन लक्षण वा भ्रम पैदा करी था।
2: सर्पदंशक बेनमेन कर्जिना पहला प्राथमिक उपचार कलक बिरामीन सांत्वना देन अर्थात शांत रखा हो। काकर कलशे सापन का दसाई पाचा होना ठ्यू डर का कारण फिर बिरामीन का मृत्यु समूह विषक छन। दसलक हाट वा गुआराहन हलचल निविदेन एक ठोप प्रभावकारी उपाय हो। दसलक मनयन आराम से वो ठंगा का सुटा कर धर पठा तथ्यु लगा खुलसे फिर दसलक ठावन हिल दिहे निविद गटलक भागन ढ्यू चढ़ से बीज हट्टो बड़ी मात्रा में रकट हो लिंक में फैलिना हुई को से उभागन श्याकर्षण कम चलेना कर पठा।
1: सपदस्लत मनयन तत्काल कर पड़ा प्राथमिक उपचार का विषय में विज्ञक बात फे सुनी ना तयजी मैं तो सपदस्लक मनयन काकर शांत धर पठा ओ सपदस्थी की ऊ मनयन काका कर पठा काकर निहित कना विषय में ढ्यूर बात था पैना मन लाओ।
2: अपना पिना जिज्ञासा हमारे श्रोता सहभागी नौकन में फिर हुई सठन पुष्पाजी बिहान ढील निकलखन सर्पदंश संबंधी भेरी अंचल अस्पताल में कार्यरत विज्ञ डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य शेखर गैलक बातचीत सुनी दोसरो बागी छलफल करी।
12: सर्पदंश से ज्वार गैलक रोकथाम ओसेह का सचेतना व्यवस्थापन और प्राथमिक उपचार यही में व्यवस्थापन करना क्रम में सपा दस सेकलक पाच ओसिन मनैन हमारा का कर पर्था।
3: सर्वप्रथम तो सर्प टोक सके कुन कन्टेक्स में
13: सबसे पहले तो सप का सेकलक पाच कहाँ कटलक हो कौन कन्टेक्स में कटलक हो उहिले ढ्यूर असर पठा जस्त रात खसुटल बेला में सप काटल हो कलसी ऊ विषा सप रहना संभावना एकदम ढ्यूर ठा ओसिन बेला में एउटा छोट छोट बाटो में नियल में राखन सर्पदंश पूर्ण उपचार जहां बा भेन्टिलेटर सहित का एंटीभेनम उपचार जहां बा वहां ले जाई पर्ना आवश्यक हुई था अथवा कमती में स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाई पड़ल। सामान्यतया डगरी में न्यांग काटल संजेक समय में काटल कलसी चाहे हुटर नन भेनमस बीस निरल साप रह सक वह फिर सबसे पहले तो सप काटल कलसी अकटाई नहीं हुई सबको साप बिखा नहीं रहा हमारे नेपाल का संदर्भ में सह साप कटल कलसी नब्बे ठो साप बिख नहीं रहा वह वर्ष बिख निरल सप काटल हो कलसी ऊ सामान्य चिमट काटल से हो वहीं कौन अप्ठारो निपारट बिरामियान एक ठो टीटी खोप लगाकर घर पठाने से बैठा यदि हमारा सप बिखा नहीं हो कि कन्फर्म कर ली कलसी तर सबको मन वही कन्फर्म नहीं कर वह वर्ष सप कटल को लक्षण ऐठा कि कैखन ग्यारह बारह घंटा समय अस्पताल में ढाला चलन चाहे बा यदि अपना कन्फर्म बाटी सप फोटो खींच कर लेना बाटी सप भोख कर लेना बाटी सप मजासी चिन्ह एक दूजान देखा कर ई सप बिखा नहीं हो कना कन्फर्म बाटी कल से रिएश्योरेंस कई खा टीटी खोप लगाकर घर पठाने से बैठा
3: खोप लगाए रिएश्योरेंस कर घर पठाई दे
12: जस्ट सप डसलबा कल से उखर चलमलाए नि हुई शांत रह पर्था कना बाट बाजे याकर विषय में कुछ व्याख्या कर दे कि
3: ठीक कुरा हो यदि सफल दशक
13: एकदम ठीक बात हो यदि सप काटल वो मने को बीक छोड़वा कल से वो मनिया चरमला का न्यागल कल से काटल ठाव से बीक मने रक्त संचार में से छट्ट फैल खन मने ब्रेन संपूर्ण से ठा वो बिहान बीक का असर झट्टे पड़ा वो वर्ष जहां कटलवा वो ठाव न रेस्ट के ढाली कल से ब्लड सर्कुलेशन में कम हुई था वो देहिक रक्त संचार में बीक पुगना समय लग था वो अस्पताल सम पुगना ब्याला समक लाग हमारा समय आना किन सेक्षी वो हुईला कोर से निचलना निचलना कलक कारण वो हो वो आप अकटाई निहुज करना बाट जब भी ठीक हो काकर कल से कबू कबू सप काटल मनिया अकटा का व्यवस्थ हो सकता न्यूरोजेनिक सप हो जाए सकता वो वर्ष सैकल सम नियक्टा खना सपो काटल ठाव निचल ख निचला खर रहा था
12: सपुआ दसलक मनयाहन दस्ती की अथवा दसलक पाछ कुछ खवैना पियना बाट का विषय में का सलाह देवी
3: सर्पले दसी सके हमीले
13: सप दसलक पाछ ऊ सप बिखा हो सकता वो वर्ष कुछ नियो खवाई कलक हो काकर कलसे यदि ऊ दोमिनिया सप कटलक हो कलसे 15 मिनट से आधा घंटा सम्म पूरा बिख लाग से था। पूरा बिख लगने से मनिया बेहोश भी था। बेहोश भी मनिया आप श्वास प्रश्वास का न लिहना कंट्रोल में धरने जाकर वाकर लाल श्वास प्रश्वास नदी मजी था। खाई चीज फिर उलट खा श्वास प्रश्वास में जाए सकता वो मनिया निमोनिया हुई सकता वो वर्षे खाई दिए निविट करना मान्यता हमारे लेला बाटी। तर यदि सबो कट्टी के अस्पताल पुगली सबो फोटो खींच कर लेनली अथवा सबो मार्क लेख रही वो सबो चिन्ह मैंने देखा कर ये सबो बिखानी हो कना कन्फर्म हुई कर से मुख बारे नहीं पड़ा
3: कन्फर्म भैस हमें मुख बारे राख्
12: सबो डसलक कतलक वा खोटकलक अथवा ज्या कही ओसिन ठमा बहन्ना चलन फेबा ओसिन बहन्ना चलन का विषय में कुछ कह चाहबी
3: सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नु भयो अब पहिला पहिला
13: सान्दर्भिक प्रश्न गर्ली पहिला पहिला चाहिँ कारह कलस सबो कटलक ठाउँ से बीक ऊपर ना जाए कि खन बीस वही से ऊपर ना जाए कना उद्देश्य बहानी चलन रहा तर कटा कर्ख बहन्ना कना ठानी पर्से कर से बहान दिए बेर मन बीस तेन निसर फिस्याकर तर वहां का रक्त संचार रोग जाख मन खाट बड़ा जो काटा पर्ना हो उन्हीं जान ले सकने अवस्था होने पर्से वही अब उसे निकर्ना करना बाट प्रोटोकॉल में ढर गिर ऊ निकर ठीक हुई काकर कलसिए निजान का कलसिए उसे झन ढे छेटी पुगेन
3: बड़ी क्षति
12: मुन्द्री घड़ी पेटी
3: औठी घड़ी को कुरा में चाहे
13: मुन्द्री घड़ी पेटी अथवा कौन बालाशाला घल्लबा कलस चाहे हाथ में गुआरम का निकर्स मजा उठा पहले जो निकर्ना ताकि सबको काटल ठाव सुइटी सुइटी जाकर फिर उन्हीं रक्त संचार रुआ क्लाक सहयोग पुगाई से ठा
12: जस्तै यहाँ भेरीका अथवा मध्य पश्चिमका पाके पर्दिया कैलाली ओसेका दान देउखुरी कपिल वस्तुमा बाटी यी क्षेत्र सर्पदंशको प्रकोपीलक क्षेत्र हो। पुरान चलन जस्तै कि उदाहरणका लागि थामी छाक्री छारफुक गर्न चलन बाँडिन्थे
13: खासै आदिवासी थारूङ र मधेसी जनतालाई आमिन ढिर्बा एक चोक उदाहरण का बाकलसे रात खन सपो कटलक करीब एक बजे और दोसर बेरमे आपन मने सपो जीती है पकड़ खेल लेनलक पाछा बेरमे ओरासाकल रहा सपो हमारे जीती रहा उसी अवस्था में हमको का करल कलसे सपो पूजा कर भी न हूँ ड्यूटर पूजा कर भी न हूँ हमको समय उन्हें बिता दल बेरमे ओरा दे
3: समय उन्होंने व्यतीत करे बिरामी
12: सांप दशलक पाँच एम्बुलेन्स अथवा कोनो तरिकाले प्रेम्यान अस्पताल पुगेन सल्लाह देवी
3: सर्पले डसिसकेपछि सबभन्दा पहिला
13: सप दशलक पाँच सबसे पहिला आफ्नो आन्जर पान्जर कुन साधनमा जुन साधन झट्ट पुगाइसक्न बा सामान्यतया एम्बुलेन्स निउलेसे फे आजकल गाउँ गाउँमा अटो रिक्सा पाजे ठा मोटरसाइकलमा सप काटल मने हैन बीचमा ढेका लैजाइ सिक्दी ठा कुछ निमिल्लसले साइकलमा बैठाक फे लैजाइ सिक्दी ठा असिन हुइला कोर्से डगरी दूरी घटेना झट्ट पुगेन जोरमिरिक साधन भएको फेरि अस्पताल पुगाइ सिद्धि
12: और जनसप डस्था ऊ सपको फोटो खिच पर्था कैका कथा यी कत्रा उचित सल्लाह हो
3: एकदम राम्रो सल्लाह सर
13: यी बहुत मजा सल्लाह हो यी बहुत आइडिया रहेछ यहीले करबे बेरमिया अवस्या लाखन अनावश्यक दुःख फे पाइनी पर डाक्टर फे यी विषाह सप हो कि निहो कि निश्चित कैकन बेरमियान घर फे पठाइ सक्छ
12: मुस्याकर सापन फेर चलाइने हुई छुवनी हुइटकन कहाइबा केहीमा कत्रा सत्यता बा
3: ठीक हो मरिसकेको सर्प भनेर मान्छेले भ्रम पराए हुन सक्छ
13: सत्य हो मनै सप मुस्याकल हो कना भ्रम फे परिसक्छ सप आराम गर्न बेला रहस्य ठा सप मोलस रहस्य फे जितिय रहस्य ठा हो चलेले से खोटक से ठा काटे से ठा ओ मोल सप हो स्याकल सम्म नि चलेन ओ चलेले से फे सतर्क हो चलेन सल्लाह दिए टुमे
12: हमार शहर गाउँमा ख सप नचाख रमता देखैन चलन बा पसिक सपुवाल्यामका रमता देखैना कला कहरना चलन कत्रा उचित हो
3: त्यो चाहिँ मेरो विचारमा त्यति
13: ऊ चाहिँ मेरो विचारमा ओटा ठिक नै हो हुक्र विखा सपु रहेछ फेरि डाँट निकालका बिस रेट बनाएको ल्याउन रहेछ यहीले लर्कडको का प्रशिक्षण गरेछ ए सापन त खेलाइसक्दिन रहेछ साप कला र सहयोगी प्राणी भएर कहु कला भरम प्रशिक्षण दुस्साहस आइसक्छन् ऊ वर्षे वर्षिन प्रवृत्ति क्ला उसिन लड्कन देखाइनी
12: आजकल सम्पन्न बचैन मनै फेर डेक प्रतिबाट सापन रेस्क्यू गर्न मनैनका सल्लाह देवी
3: सर्पको रेस्क्युरहरूलाई मेरो एकदमै
13: सापनको रेस्क्युर हुकन एकदम मर शुभकामना बा मजासे सापनको रेस्क्यू गरी सापनको रेस्क्यू कटी कटी अपना पर रेस्क्यू गर करना पर मर शुभेच्छा बा काकर कि सापनको रेस्क्यू गर्ना काम खतरनाक काम हो असिन जोखिममा रहेको फे उहाँ हुनको काम कर्तीबाट सापन मुनामा से जोगिना अनावश्यक मुनामा से जोगा एकलाक उहाँको भूमिका र था अठला कटी कटी फे झिउ जेस्की और हुकनक देहांत भिलक हमरो सुनल बाटी उह वर्षे पूर्ण रूप में पोख्त निवख तैयारी निवख संग संगयन का ब्याकअप निवखन रेस्क्यू कर निजाइक लाख में अर्जी को रखू
3: सुझाव दिन चाहन्छु
1: सपदस्लक मनेहन तत्काल करपना प्राथमिक उपचार का विषय विशेष कै ख सर्वदंश बिरामीन शांत धर पर्न ओ खैना चीज खवाई निगिना विषयमा सक्कु झन प्रश्न पार्देलक म सर्वदंश सम्बन्धी विज्ञ डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य प्रति आभारी बाटी
14: नरेन्द्र दादु मैं तो अपना फोन डर त्याग बाटी
15: गोन्देमा सुटल बाटी बाबू चोली नी
14: कहाँ थी काटो लग्न हरक आदर पावे तो सफा सुखर बनेल बाटी तर फिर पार्टी तू डाल ना अपना हन
16: यहाँ पोली ऊपर कटलक हो नानी अपना एम्बुलेंस है खबर तो करना बाटा कटा बेर में को आपू ना हो
14: ना ते बहुजी हमरा बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई दिन गुआरा हना जिन से रेगी वो नरेश दादू एम्बुलेंस में ना समय लागे से था नगर के क्रो मोटरसाइकिल बाक लाचे उन्हें मैं बैठा कर बहुजी है ना सरपरल सा उपचार केंद्र ले जी ना तैयारी करो पड़ल
15: ये बेला का खैना जात है दिए न्यूट ना स्वयं सेविका दीदी
14: हो अब ना ठीक करी डॉक्टर रो निकाट सम गरमेन कुछ थे खवाई ली हुई
17: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए ना सपवा कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक लुगा गरगहना घरी पेटी मुंडी बाकल से फाफर करा दी गरमने अपेले से झन समस्या बिना बिल को से गरमयान शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमन सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कष्ट भन्ना फिर कठ असी कर्ण से लक्त संसार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सपवा दशलक शरीर का भाग काट ख फाक पौन अवस्था थे आई सिक्ठा
1: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सीठा
5: अत्रा बेला हाम्रो रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश सुन्ति बाटी
2: आज हाम्रा सपोर्ट अस्लक मुनेहन तत्काल कर्पण प्राथमिक उपचारको विषयमा संवाद कर्की बाटी अबसम्म हाम्रा श्रोता सहभागिनको विचार हो सर्वदंश सम्धि विज्ञ डाक्टर शेखर गिरेप बाटी सुन्दी
1: अत्रा बेला हाम्रो बिन्दु होम कुमार बटको एक तिसरा पैठार सुन्न बेला हुल्बा सर्पदंश सम्बन्धी जनचेतना फैलैन अभियानमा सक्रिय बिन्दु होम कुमार आगक भागमा भ्रमण सर्थे हमार पर्यावरण अभिन्न अंग हुईला कोर्से हिकन मार निहित कना बाट सिखैला सर्पदंश से बच खरग आंजर पांजर लठ्यांग घास ब्याल ब्याल में काट का हटैना फोहर का उचित व्यवस्थापन करना अन्न भंडारण में साप आकर्षित हुईने ढेक लाख सुझी लड़ल
2: हम कुमार का पड़ोसी नथुका के घर में साप ऐलक मुख्य कारण खरग आंजर पांजर छापास वो काठी कटकोड़ा हो कना बाट सहज अनुमान नाटिका में से होलवा नथुका का घर से निष्कटी कनबेल बिंदु और होम कुमार मेला जीना बाट करती रह होम कुमार खाठा में सप्पा डसल घाव डाग बाट फे हुईटी रह उठ मना दिनेश न सप्पा कटल कई ख बिंदु आना फोन ऐर दिनेश का विषय में ठा पाए लाग वो हुकार उपचार कसी को उठन कई ख बुझ हम फिर बिंदु और होम कुमार सुन जाए ना
15: मैं सप्पा कटल मैं मोजिम की काब
18: जिंदा रह ना सुखराम टैमसिम बैसो ना वह कुमार बिंदु से आ गए
14: ना डराओ ना सुखराम विन कुछ नहीं विका नी डरा खस चल रहो
4: महिता एकदम डर लागे तो बिंदु
5: सुखराम जिंदा राव का कुछ नहीं विक विन तांत फोगा बैठी था वो सब पर कटलक था मा ना चलाओ वो ना हिलाओ वही से था
15: बैठा
6: आप हम रे तू इन सर्पदंश से उपचार के अंदर मर लीजिए भी अनीता ठीक हो जाएगी ना वह कुमार
15: हो नी सुखराम नी चल के चिमचाम रहो मैं तुहार बेल्ट पेटी मुंद्री घरी झिक दे तू ना
6: बैठा एम्बुलेंस ऐना समय लगी की का अपना बाइक में बैठा कर ले जाना हो की उन कुमार
5: बैठा बैठा बिंदु दिन बारह नहीं बिता कर तू और उना मित्र का मोर बाइक में बैठा हो दूसरा तू पास से चूर का सुखराम आप पक रहो अच्छा उपचार केंद्र में ले जा दारी
6: ले और उना मैं यहाँ सारे करोटा सुखराम आप बाइक में बैठा कर बैठा बिंदु मैं दाही नौ से पकड़ कर उठे तू बाव से उठी हूँ ना बैठा ले रस रस ना सब पाकत लग बारह नहीं लाओ ना सुखराम हनी हम कुमार अपना बाइक स्टार्ट करी था
5: बैठा मैं बाइक स्टार्ट कर तू ना
6: हो लो सुस्त सुस्त धरो था बाइक में
14: लो उठाओ सुखा मनाओ तू ना
6: बैठा बिंदु लो विन
18: आप अपना से दूरी बिंदु बैठना
6: बैठा अपना सुखराम होना पकड़ न रही ना मैं इजोर
18: बैठा जी विल कुमार जाए
5: जी अरुणा हमारा पुख्ता है ना
18: बैठा बैठा
1: अपना हुक्र यहाँ का ब्याला में सर्पदंश उपचार केंद्र में लेने का ढेर मजा कर ली असिन ब्याला में सपन से पहले यातायात के माध्यम में ज्याबा उहिले उपचार केंद्र में लेने डाला पड़ता दंत चिकित्सा ढील करना से फिर भारी भूल हुई था वो पछताई पड़ना हुई था अनि सुखराम भाई मोर मुख्य प्रश्न सपवा कसिन रह
15: बुड्डा
18: सपवा त गरे छ स्वास्थ्य कर्मी दिदी सुखराम को जुत्ता मनुख को बैठन काम जुत्ता घाला बे त काट डार
1: ए पक्क बाटो न घरे चाहो कोई छ
18: पक्क बाटो दिदी मैं मोबाइल में फोटो भी खींच रहा था
1: ए हो न ठीक बा मैं आज सुखराम बीख विरोधी बीरोक सुई लगा देम दोसो तो ठीक हो जे का हूँ ले अब निदराख आराम करो तो मैं सुई लगा दे दारू
5: ले सुखराम आप डराई नहीं पड़ी ना
15: धन्यवाद ना ओम कुमार दादू बिंदी दीदी अपना होकना की गुण में कब्बू फैनने बिस्रे
18: ले आप असिन बात बटोना समय लिखो आराम करो
1: ले सुई फिर लगा दे आप चोखा जे बो तू वो अपना हुकन भूमि जहन ठीक थी धन्यवाद बा न काजे कलश इस समय में अपना हुक्र यहाँ सर्पदंश उपचार केन्द्र में लान एकदम मजा कर ली काजे की सापन का कटाई ले प्रभावित मनन समय में जो उपचार कर सकन से बचाई सक दी था वो यहीं ले हुई ना मृत्यु फिर कम कर सक दी था
5: वह वस्तु तो हजार हजार थे सर्पदंश उपचार केन्द्र में लेकर लाखों स्वास्थ्य कर्मी दीदी
1: अनि सही वो भरपर्ना जानकारी पाएक लाख वो लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाएक लाख वेब पेज snakebitenepal.org में वो www.facebook.com/snakebitenepal में फिर लगन कैख आवश्यक जानकारी लिए सेक जिठा न
18: ओहो कतरा महत्वपूर्ण जानकारी दे रही आप कुछ जानकारी लिया पड़ ली snakebitenepal.org में www.facebook.com/snakebitenepal पेज में जाकर ले दी मैं हूँ कुमार
5: होता जो बिंदु रात से बढ़ लागल मैं तुम्हें न घर सम पुगा देम दूसरा सुखराम ले फिर आई मई
18: डीटा सिस्टर मैं अब लागत हूँ नमस्ते अन्य स्वास्थ्य कर्मी दीदी मैं अपना न सफक फोटो पठा देना व्हाट्सएप में से
1: बैठा मैं ये रेकर्ड धरना थे मदद हुई
18: बाइक में बैठी ना उनको मैं
5: बैठा बैठी ना बिंदु अन्न समय में सुखराम न सर्पदंश उपचार केन्द्र में लिया सीखी नहीं तो सुखराम पर जान जाए फिर सीखने रहन
18: वो तो कलक हूँ कुमार जो उस बाइक के बीच में सुखराम धैखन देना उपाय लगाए था मजा कर ली हमको
5: वो तो एम्बुलेंस है ना समय तक नहीं रहा वो वर्ष तो इसी वो सोचलक मोटरसाइकिल में बैठा कर लाना मिलता काम कहीं का अन्य मोटरसाइकिल में ले जाए कलक नहीं
18: वो तो अपन लग जा साधन बा वो साधन में ढेख झट झट सबको काटन मन यहाँ सबको ढंग से उपचार केन्द्र में ले जा रहा
5: पड़ अनि यहाँ कतरा महत्वपूर्ण जानकारी थे बैली सर्पदंश उपचार केन्द्र का विषय में आम दिन जानकारी देखना अर्पण वेब पेज से था पैली snakebitenepal.org
18: वो जना बिहान सुने ना काल महीसे संग मेला दे दी ना
5: काजे कावा जो सुन मेला में
18: आप गए ना से वो था ना बेटा
5: आप कही ना का बात उस मेला में कही था
18: सरप्राइज
2: गिंदु और होम कुमार एक सुंदरिया दिनेशन जुत्ता में नुख खरल सपवा जुत्ता बना बना दस्त रहा सबको जना दिनेशन सांतो ना देर बाटा सपवा दस्त था वो ना हिलाए नी दिए हुई कला से खेना चीज छो कुछ खाई नी दिए हुई मुकाया दे ही मरहल टम्म कस के लुगा पेटी मुंडी घरी जसिन सबको खोल खप भोगलार बार गई बा हमार संग रहल जे की वो फिर सपवा दस्त खंड में हमारा करपना बात यह जो हो
1: संग संग हमारा लुगा व जुत्ता खन्ना से आग जांच कर अपना बात फे आजुक छलफल महत्वपूर्ण सिखाई हो ओसै का सर्पदंश बेरमियान मोटरसाइकिल वा और तत्काल उपलब्ध होना सवारी साधन में सहजील से ठेक सर्पदंश उपचार केन्द्र में ले जाय पर्ना बात फे आजुक नाटक वसे हमारा सिखला बाटी और कार्यक्रम में फे बिंदु होम कुमार का बीच का संवाद सुनने बाटी सहभागी श्रोता यह विषय वस्तु छलफलक संग रेडियो कार्यक्रम जीवन संदेश का आजुक ई पैधार मसी मई पुष्पा
2: वो मई एकराज बिदा मंगटी और अंक में सापन का डसाई से बचना उपाय विषय में और नव जानकारी लेख पेनी जो बाटी आज बिराटी
19: नमस्ते।
1: यी रेडियो प्रस्तुतिमा विद्वान अतिथि हुक्र बटुलक उहाँ हुकनक निजी विचार मान्जैने बा ओ नेपाल सर्पदंश रोकथाम परियोजना तर्फसे अभिव्यक्ति हुइलक आधिकारिक विचार दैथ माननी हुई।
20: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत।
21: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको आइतबार र बुधबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
22: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
23: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
24: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
22: डेलिभरीका लागि
24: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
22: टीकापुर कैलाली
25: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870106772।
26: स्वास्थ्यका लागि पानी
21: विद्युत महसुल भुक्तानी सम्बन्धी सूचना। 2083 असार 1 गतेबाट टीकापुर वितरण केन्द्र र लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित विद्युत महसुल काउन्टर बन्द गरिने लक्ष्य राखिएकोले विद्युत महसुल अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्न हुन सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। विद्युत महसुल अनलाइन भुक्तानी गर्ने समय बिहान 8 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।
27: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाऊं।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमकै सञ्चिक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबरमा अपनीकन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोहलाव सम्र पात्र और नेपाली पात्र में फेसिंटी हलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 150 जना ज्येष्ठ नागरिक हस्पाने छूट वितरण करला। कैलाली प्रहरी की वैशाख महीना की प्रगति लागू औसत अवैध मदिरा बरामद 11 लाख राजस्व संकलन। नेपालमै पहिलो चो हरित हाइड्रोजन मसे खाना पकेना प्रविधि की विकास। ओलिव टू कुशल के शतक में अमेरिका के ऊपर नेपाल के शानदार जीत। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडा मरला 150 जना ज्येष्ठ नागरिक सुपाने झूट वितरण कलबाट वडा कार्यालय के गर्मी के समय में मच्छर कटना से बहलक सपुआ किरा कटना डर हुना हुलक ज्येष्ठ नागरिक के सुरक्षा सहयोग होस कैके झूल वितरण कलक जनबाट झूल वितरण करती वडा अध्यक्ष मोहन बिक वडामा 2000 बढ़ी ज्येष्ठ नागरिक हुलक यह वर्ष 73 वर्ष उमेर समूह ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कलक बोटिलबाट वहां के हरेक वर्ष ज्येष्ठ नागरिक सम्मान के कार्यकर्ती लग बोटी है वर्ष मच्छर से कटलक कारण लग्ना रोग मछे बचना सहयोग होस कैके झूल वितरण कलक जानकारी दिलबाट। विगत के सम्मान के संस्कृति हरिटी गैलक ज्येष्ठ नागरिक माया सम्मान करपटकै के संदेश देना आसिन कार्यकर्ती अलग बोटिलबाट वडा सदस्य गणेश खर्ती मगर ज्येष्ठ नागरिक सरकार के भूल नै हो फिर महसूस करेलक ओ सपासे ओ मच्छर से कटलक दसिन ढेरसिन जोखिम में बस्ना झूल लगा के सुत पलटकै के संदेश देना यी कार्यकलक बोटिलबाट। कार्यक्रम में वडा सचिव चक्र बहादुर रावत चालू आर्थिक वर्ष के ₹1 लाख बजेट मसे ज्येष्ठ नागरिक सम्मान स्वरूप झूल उपलब्ध करेलक बोटिलबाट। झूल पाइल ज्येष्ठ नागरिक खुशी हुलबाट रात के सूचना मसस्य कटलक सतैलक अब झूल लगा के सूचना ज्येष्ठ नागरिक सरस्वती देवी आचार्य बोटिलबाटी और ज्येष्ठ नागरिक कौशिला ढुंगाना झूल पुराण हुल रहत र वडा कार्यालय उपलब्ध करेलक अब झूल फेरना बोटिलबाटी। कार्यक्रम में पत्रकार दुर्गा देवकोटा झलनाथ खनाल समेत वडा कार्यालय ज्येष्ठ नागरिक सम्मान करलक संग सकारात्मक हुईलक बोटिलबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली के चालू आर्थिक वर्ष के वैशाख महीना में जिल्ला के शांति सुरक्षा अपराध नियंत्रण तथा सवारी व्यवस्थापन के क्षेत्र में हासिल कलक प्रगति विवरण सार्वजनिक कलबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली के सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब अधीक्षक युगन्द्र तिमुल सेना दलक जानकारी अनुसार वैशाख महीनामा लागू असत ओसार पसार नियन्त्रण अवैध घरेलू मदिरा जफत और सवारी नियम उल्लंघन करना के ऊपर कार्यवाही करके लाखों रूपियाँ राजस्व संकलन कलबाट पाठक समय समाजमा मुख्य चुनौती के रूप में देखा पर्लक लागू औसत दुर्व्यसनीय तस्करी नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत प्रहरी वैशाख महीनामा भारी सफलता हाथ पर्लबाट यह अवधि में प्रहरी के लागू औसत सम्बन्धी कुल 58 मुद्दा दर्ता करके अपराधमा संलग्न 100 जना पक्राउ कलक सफल हुआ मह 2 जना महिला हो 98 जना पुरूष रहलबाट पक्राउ कलक व्यक्ति हुकन संघ प्रहरी 81 ग्राम 640 मिलीग्राम खैरो हिरोन 20 ग्राम 310 मिलीग्राम चरेसो 44 ग्राम 970 मिलीग्राम गांजा बरामद कलक कानूनी कार्यवाही आगह बढ़िलबाट। अस्तंकर के सामुदायिक सुरक्षा खलल पुगेना हो घरेलू हिंसा के मुख्य कारण बन्न कलक अवैध मदिरा नियन्त्रण तर्फ फे कैलाली जिल्ला के प्रहरी आपन सक्रियता बढ़िलबाट वैशाख महीना में जिल्ला के धेरसिंह ठाव मसे 1562 लीटर तैयारी घरेलू मदिरा हो मदिरा बनना प्रयोग करना 6200 लीटर कच्चा पदार्थ मरामत करके नष्ट कलक जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली जनेलवा। खोज खबर में एक विश्राम विषम पाछ फिर से विश्व सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अह हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: दाजु हेर्नुहोस् न, भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ। तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ। भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु।
4: के गरु त म, यत्रो उपचार गरिसके, कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न।
3: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा, त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि।
4: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक।
5: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू: ओपीडी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, एक्सरे सेवा, ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा, ईसीजी सेवा, मेडिकल सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा। बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टीकापुर ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड, टीकापुर। फोन नम्बर 0191-560-095, मोबाइल नम्बर 98-484-27-359।
6: शरीरमा लाल वा फुस्तर छुअबेर ठहानी बिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुजिना डाग्दै पर्लसी हातद्वारा झमझम गर्ना तथा मास सुहाको बठिना हुलसे कुष्ठरोग हुइसेक्ठा।
7: कुष्ठरोग महिला वा पुरुष जेहीफे लागसेक्ठा। कुष्ठरोगको शंका लगती कि लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल आईएनएफ नेपाल बाँके जानकी 3 मानपुरमा सम्पर्क गरी
6: महिला उग्र अस्पतालसम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्न घर पुरुष उग्र मद्दत गरी।
7: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माणका लागि साइनिङ अस्पताल आईएनएफ नेपाल बाँकेसे जनहितमा जारी सन्देश।
0: प्रधानमन्त्री कार्यालय मसिंहकोति दैलेखकी एक वडा सचिव धाक धम्की दिना प्रकाश खड्का पक्राउ पलबाट सुर्खेतके वीरेन्द्रनगर नगरपालिका छ। वीरेन्द्र चौक घर हुलक हाल काठमाडौँके शंखमूल बटीहल। 22 वर्षीय खड्का काठमाडौँ मसी पक्राउ पलबाट खड्कामा पक्राउ गरेको अनुसन्धान शुरू गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रमुख एसएसपी रमेश थापा जानकारी दिए। खड्का प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालय मसिंहकोति दैलेखकी डुल्लु नगरपालिका 13 वडा सचिव कमल भण्डारी टेलिफोन गरेर धेर अशिष्ट अमर्यादित भाषामा धम्कैलक अडियो सार्वजनिक सञ्जालमा छैलवा। शनिबारकै प्रधानमन्त्री तथा परिषद मन्त्री परिषदकै कार्यालय खड्काकी उप कड़ा कार्यवाही गर्न निर्देशन देलक जनैलबाट। बागमुङकै बडीघाट गाउँपालिकामा नेपालमा पहिलोचो खाना पकाइना प्रयोजन केला खरिद हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गर्न प्रविधिकै विकास गरिवा। खेर गैटिहल विद्युत पानीकै प्रयोग गरेकै उत्पादन कलक हाइड्रोजन ग्यासकै सफल परीक्षण पास। अब सिलिनमा भर्के चुलो बन्न लग्लबाट नमूना प्रयोजनकै रूपमा 3 वर्ष स्याएको शुरू कलक अध्ययन तथा अनुसन्धान सफल भइल्पा छ। हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गरेकै व्यावसायिक प्रयोगतर्फ आँखा बढ़ेलक जनबाट। परियोजना अन्तर्गत उत्पादन कलक ग्यास मसे चुल्हा बालकै सजिलो खाना पकेना सेक्ना देगिल्बा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित धेरैसिन देशकै विश्वविद्यालय वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संस्थाकै सहकारीमा परियोजना सञ्जाल कर्लबाट परियोजनाकै हाइड्रोजन ग्यासकै सुरक्षित वितरण प्रणाली हो व्यावसायिक विस्तारकै विषयमा थप अध्ययन आँखा बढ़िरहनबाट। बढ़ीगाउँ गाउँपालिका 2 स्थित गिरिजङ खोलवा लघु जल विद्युत आयोजना मसी उत्पादन हुन विद्युत प्रयोग गरेर हाइड्रोजन ग्यास निकल्नबाट। विक्रमसम्म 2066 सालमा स्थापना हुलक उक्त लघु जल विद्युत आयोजनाकी विद्युत खपत नै हो कि खेर गैटिहल अवस्थामा अवस्थाको उपयोग गरके नयाँ प्रविधिकै परीक्षण गरिवा। 3 वर्ष से 60 साझेदार तथा प्राविधिक संस्थाकै सहकारीमा कलक अध्ययनमा से हालसम्म 8 सिलिण्डरमा हरित हाइड्रोजन ग्यास भरिदिवा। ए वर्ष च्याघ कलक प्रारम्भिक परीक्षण सफल हुल्पा छ। अब सिलिण्डरमा सुरक्षित रूपमा भर्ना कार्य लग्लबा र नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनकै अध्यक्ष मोहनदास महानन्दकै अनुसार पानी मर्लक अक्सिजन अलग गरके हाइड्रोजन सक्कु निकारकै सिलिण्डरमा भर्ना प्रविधिकै प्रयोग गरिवा। आवश्यकता अनुसार उक्त ग्यास चुल्हामा प्रयोग गर्न सेक्ना उहाँ बोटिलबाट। नेपाल इनर्जी फाउण्डेशन ऊर्जा वातावरण केलाक महिला संचार नेपाल एसएनडीओ कम्पनी लिमिटेड इकेओ एचएसएलडी सिलिण्डर स्विजरल्याण्ड साझेदार तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र काठमाडौँ बडीगाँड गाउँपालिका हो। गिरिङ खोलवा लघु जलविद्युत आयोजनाकी सहकारीमा धेरैसिन देशकै वैज्ञानिक तथा प्रविधिकोनकी सहयोगमा खाना पकाएको हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गरिवा। उत्पादन कलक हाइड्रोजन ग्यास मिसे चुल्हा बुलक शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सरकारकी आर्थिक मामिला मन्त्री जीत बहादुर शेरचन प्रयोजन उद्घाटन कला रही मन्त्री शेरचन हरित हाइड्रोजन के वातावरण संरक्षण विद्युत खपत वृद्धि तथा स्वदेशी ऊर्जा मसे खाना पकाइना सम्भावना बढ़ेला खुलक अशीर परियोजना राज्य नीतिगत रूपमा आघा बढ़ेना बुटिलोबाट नेपाल एनर्जी फाउण्डेशनकी व्यवस्थापक गिल्ली घिमिरेकी अनुसार उत्पादन कलक ग्यास सुरक्षित रूपमा सिलिण्डरमा भर्ना विषयमा केलिक 18 महिना अध्ययन कला रही उहाँके 1 केजी हाइड्रोजन ग्यास कम परिवार गरीब 1 सातासम्म खाना पकाइना उहाँ पुग्न उहाँकी कहिबा गिरिङ खुलवा लघु जलविद्युत सहकारकी 75 किलोवाट क्षमताकी आयोजनाकी पुनर्निर्माण भवन तथा कुलवा मर्मरसे ग्यास उत्पादनसम्म आइपुग्लक अध्ययन बाहेक करिब 1 करोड़ खर्च हो सकल घिमिरे बोटिलोबाट खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछा फेरि विश्वतिर विश्वामुदायिक रेडियो टिका पुरा एफएम
8: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जार सेकल
9: अरे का करुरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का
8: मिस्तरान वर्जन हो कना घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनैल बाट अल्युमिनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो ना कबू कहुरा घुम जाए था पाए
10: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्युमिनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
11: मिलन अल्युमिनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
12: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
13: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
12: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
13: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
12: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
13: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
12: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
13: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
12: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
13: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
12: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
13: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
12: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 63 77 72
14: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
15: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बञ्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588
0: विश्राम पाछा फ्रेसे स्वागत बा अब खेल खबर ओपनर कुशल भुटेलके शतकमा आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग टू अन्तर्गत अमेरिकाकी उप नेपाल 9 विकेट खेरे शानदार जीत निकल्नबाट अमेरिका दिलक 196 रनके लक्ष्य नेपाल 36 ओभर 4 ओभरमा 1 विकेट गुमाएकी पूरा गर्ल ओपनर कुशल 117 बलमा 120 रनके अभिजित शतकीय इन्स खेल उहाँके 13 चौका व 4 छक्का प्रहार गर्ल कुशल हो आसिफ शेख पहिलो विकेट केला 145 रनके उत्कृष्ट साझेदारी कर्ल रही आसिफ 72 बलमा 59 रन बनाएकी आउट हुई ईशान पाण्डे 29 बलमा 16 रन बनाएके नट आउट रहल बलिङमा मोहम्मद मोहसिने 1 विकेट लिएर इन्स्याघ त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितकी ब्याटिङ कर्लक अमेरिका 43 ओभर 3 बलमा 195 रनमा समेटल रही अमेरिका केलाको पुनर स्मिथ पटेल सर्वाधिक 84 रन बनेला उहाँकी 89 बलमा 8 चौका व 3 छक्का प्रहार कल स्मिथ सेहान जय सूर्य साग दोस्रो विकेट केला शतकीय साझेदारी कल रही सेहान 52 बलमा 50 रन बनाकी आउठिला शतकीय साझेदारी हँ नेपालके उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी ब्रेक लगेला रही 122 रन जोड़लक 1 विकेट गुमेलक अमेरिका ओकर पाछा फेर लगातार विकेट गुमेला पुग्ला नेपाली बलर हावी हुइलक अमेरिकी ब्याटलर भारी साझेदारी बनेन नै सक्ल मिलिन्द कुमार 28 कप्तान साई तेजा मुक्का मल्ला 4 साहेन जहागीर 6 शुभम रंजाने 2 संजय कृष्णमूर्ति 1 हरमित सिंह 14 मोहम्मद मोहन सिंह र नोस्थुस केन्जीगे 0 रनमा आउट रही सौरभ नेत्र भालकर 0 रनमा अवचित रही बलिङमा उपकप्तान दिपेन्द्र 4 सोमपाल कामी 2 तथा सन्दीप लामी छाने व गुलशन झाले 1-1 विकेट लिला नेपाल अब र तेस्रो खेल सोमबार स्कटल्याण्डमा खेल्न भुलबाट यस समाचारसँग खोज खबर बराल जेनासी पहिले खबरके मुख्य मुख्य शीर्षक फेरि एकचो टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 150 जना ज्येष्ठ नागरिकसँग सुपारी झोल वितरण गर्ल कैलाली के प्रहरी के वैशाख महीना के प्रगति लागू होस तो अवैध मदिरा बरामद 11 लाख राजस्व संकलन नेपालमा पहिलो चो हरित हाइड्रोजन मसे खाना पकना प्रविधिक विकास ओलिक 2 कुशल के शतकमा अमेरिका किपर नेपाल के शानदार जीत रिटा बुकला खोज खबर रह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद दिटी अब बुकला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदाई को यागर पास 6 बजे की खोज खबर सुना सेगी सामुदायिक रेडियो टीका ऑपरेशन सुधी रवि राम राम
16: ओहट हेर बुढ़िया बरखक समय थे बा पखारिक मुँह का रूप कर बाकी मुसवा आयल कला से आब मुसवा खुद की सपोर्ट है ऐसे था
17: ओहो होनिका सबका समझनो औरक अंदर पाले जफास से बाहर से कच्चा का पहिल बा काटा पर ना रहो
16: हाँ असी करी हेर बुढ़िया वो सिंह कला से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका कर बासी खाई दूसरा सर परिवार मने मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन कर दी तो नहीं हुई
17: मीठा हो गुरुआ असी जाला मदर ध्यान घास फोहर झफास भी था उमा साप नुख का बैठल रह सकता ना
16: वह और से टक कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर से साप मुस्कुचू के पैठनी सेकना में तो चबरदार पड़ल दूसरा घर आंजर पांजर फसफार वो सफा हुई से सांप पहना का उत्साह कम हो जाए
17: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फूल थे बा
18: सात बरखा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था इ मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना पिलक ओर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निष्कट
19: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लघ आई सक
20: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था
21: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
8: घर कहिया सिर्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
9: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
8: मिस्तरान बर्दन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
10: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टिसन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई लग मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार पे लगा जाए
11: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426
9: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भयो म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
9: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
9: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
22: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्रेक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
23: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।
24: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं दे वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलतु
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब ही जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का न घर हेरो ना पटा सुगुर बनैला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो न कबू कहो घूम जाए था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541346
3: बीतल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत सुवाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग टीकापुर कैलाली फोन नंबर 0915600095 ओ मोबाइल नंबर 9842423959

विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्राओ लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रहेको छ। विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुकरण यह सूचना से जानकारी कराई थी। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।

भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध करी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आन लाती ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमत फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: ओहट हेर बुढ़िया बरखक समय थे बा पखारिक मुँह का रुकल बाकी मुसवा आयल कलश आब मुसवा खुशी सपोर्ट आई सकता
1: ओहो हो निका सबका समझनो घरक अंदर पादर जफास थे बाहर तक अच्छा का पहिल बा कात पर ना रह
0: असी करी हेर बुढ़िया वो सिन्हो कलश से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका कर बासी खाई दूसरा सर परिवार मने मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर दी तो नहीं हुई
1: मीठा हो बुढ़वा असी जाला मदर ध्यान ध्यान पोहर घसवास भी था उमा ताप नुख का बैठल रह सकते ना
0: वह और सेटा कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काचे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर से सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना मेकर चबदार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफार वो सफा फील से साफ ऐना का उत्साह कम हो जाए
1: कल शनिश्चर थे हो ज्ञान का फुर्सत थे बा
2: साफ बरखा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था इ मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना पिलापुर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साफ मानव बस्ती लग आई सक
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसा पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
7: टीकापुर नगरपालिकाको स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी जरुरी सूचना
8: नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा यही मिति 2083 साल वैशाख 28 गतेदेखि जेठ 3 गतेसम्म मूल्य पारदर्शिता सप्ताह मनाइरहेको बेहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ
7: टीकापुर नगरपालिकाबाट गरिएको नियमित बजार अनुगमनको क्रममा यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यापार व्यवसाय पसल होटल रेस्टुरेन्ट औषधि पसल किराना लगायतका व्यवसायहरूमा बिक्री गरिने वस्तु तथा सेवाको मूल्य सूची राखेको नपाइएको हुँदा प्रत्येक व्यवसायीले बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट र अध्यावधिक मूल्य सूची सबैले देख्ने स्थानमा अनिवार्य रूपमा राख्नु हुन सूचित गरिन्छ
8: प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ
9: बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट मूल्य सूची उपभोक्ताले सजिलै देख्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ
8: उपभोक्तालाई खरिद गरेको वस्तुको बिल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ
9: म्याद नागेका गुणस्तरहीन तथा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन
7: बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट मूल्य सूची उपभोक्ताले सजिलै देख्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ
8: खाद्य तथा उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीले सरसफाई तथा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ
7: कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कालोबजारी गर्ने तथा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने कार्य गर्न पाइने छैन
8: व्यवसायी स्थल वरपर सफा व्यवस्थित तथा सुरक्षित वातावरण कायम राख्नुपर्नेछ
7: बजार अनुगमनको क्रममा आवश्यक कागजात दर्ता प्रमाणपत्र खरिद बिल लगायतका विवरण अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्नेछ
8: नगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएका निर्देशिका मापदण्ड तथा नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ
7: प्रस्तुत मापदण्डको अनिवार्य रूपमा पालना नगरेमा प्रचलित नियमानुसार भइजाने बिहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ टीकापुर नगरपालिका कार्यालय

राजन परीक्षित श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद प्रिय प्रतनामको राजा का छोरा तेरा भाई मध्य में जेठा छोरा आग्निद्र ने तपयामी बस को ठाव में राज्य गर्नुभयो। उनी आग्निद्र नामको राजा को अब इस किसिम राज्य संचालन पक्ष में नौवटा छोरा जन्म नगो सरकार नौवटा छोरा मध्य में नौ भाई राज्य को अभिलाषा कायम राख तैयारी भे लौ तो नौ भाई जम्मूद्वीप को नौ खंड में विभाजन कर दी बक्सु राजा ने पहिलो खंड को नाम हो अजनाब नाम खंड दोसरो किम पुरुष तेसरो हरिवर्ष चारों इलाव्रत पांचों रम्य छैटो हिरण्यमय सातों कुरु आठों भद्रासुर नौ केतुमाल नाम खंड होने गो सरकार तेसमा नौवटा खंड में नौ भाई को नाम ने प्रख्यात भर राखी जिसमदे में तपाई हामी बसेको ठाउँ चाहिँ मध्य भूमंडल रेखा में पर्छ जिसको जब भूमध्य भाग में इस किसिम रहेको जसको नाम हो सुंदर शहर सुंदर नगरी सुंदर स्थान अजनाब नाम गरेको खंड त्यो अजनाब नाम गरेको खंड में नाभी राजाले राज्य गर्नुभयो। वहां नाभी राजालाई राज्य सम्पा गरेर राजा आग्नेद्र जंगल सवारी हुनुभयो। उहाँले नि केही लानु भएन प्रेवतले सात दिन छोड़े केही लगेनन् आग्नेद्र नाम गरेका राजाले पनि केही लगेनन्। आग्नेद्रका छोरा नाभीले संतानोत्पादन गर्नको निमित्त भगवान नारायण वासुदेवको प्रार्थना गरा नाभी नामका राजा जन्मनुभयो। नाभी राजाले बडो प्रेम साथ विन्ती गर्नुभयो बडो आनन्दको साथमा ध्यान भयो मनन भयो कृतन भयो। नाभी नामका राजा नाभी राजाका छोरा खन महाराज सन्तान नहुनाको कारणले भगवानको प्रार्थना गरे श्याम सुन्दर भगवान गर्छौ उपकार।